जल माशा न सुझे शब मी सुना फाओ जल मा खोले न्याम अजिंदालो आज शादा शांगा खाजी नी नुदा जांगे मु फेजा।